0: प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम
1: प्रेम मुदित मन से कहो।

प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम।

आधार ये करम माता पिता बंधु सक सब हिता मना जनर जीवन घन ये कराम भक्त जनर जीवन घन ये कराम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

यज्ञये वचा द्वापरे दानमासितम् कलियुगे कलौ भक्तिर्गरीयसि तव पूर्वम्